काम साथी धुमधाम राई सपन नाइबी मेरो टियागो बिबीसँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the

0: मैनेजर बड़ा मस्किन मस्किना।
1: रेडियो संखुवा सभा समय सूचक अहिले अपराह्नको 4 बज्यो।

0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिउला।
0: किन्देऊ ल।